हरे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदरासन बैठे देवतया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संत

तिरंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखा है कीता है अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावै।

की तिल वडियाई आँख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना उह मरै ना होवै सूग देंदा रहै ना चूकै भूग।

तिस पाछै बचरे शरया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरया जन नानक बल बल सद बल जाइय तेरा अंत न पारा वरिया।

सोपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुध जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुकत पाए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तप जप बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावै मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई तुद आपे पावै सोई वरतह जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्ट सा

सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेखा है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा पानी पाव को तिन है किया पंकज मोह पाग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

चाहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस फूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निराला।

जाकुपी न पावत बेदा ताकौ कार पाहन अनुमानत महामूढ़ काशपेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पहयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी उत्पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संक्र कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण ताता। जियस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट न आय है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि नेहर हो ताके ताप तनक मोहरे हो। रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई।

तिहारो कहा। दारिद्र दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के त मैं स्वर्ण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठौर मोहो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई।

प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तपाया, सहज सेती मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो तगावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे, तेरा कार्य सब सवारणा, सब ना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया, वजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ, जिस दिया ए वडियाइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंठ कुमारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कहे नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे।

थाल विच तीन वस्तु पइयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उर तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पहु जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनकौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोए न जाए जे आवै तुद आहे। सलूक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरतिया दरगह पाइय ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वाथ दे जग मह उत्तम काडिया विरले के। महला पंजवा रखे रखनहार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मन हो ना विसारियन साध जन

0: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा
1: वाहे गुरु जी की फतेह। आओ गुरु की प्यारी साध संगत जी, हुण टाइम होया है कीर्तन दा। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी गुरदासपुर वाले अपने जत्थे समेत 8:30 बजे तक कीर्तन की हाजिरी भरी गई। उपरंत अरदास बेनती सुखासन की सेवा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

साध संग धर्म राय करी सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा, साधु के संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल, साध के संग कलुकत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग ईहा उहा सुहेला, साध संग बिछुरत हर मेला, जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न व्यर्था जावे, पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उधरे साध सुन रसे, साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, साध के संग ना मनते विसरे, साध संग सर पर निस्तरे, साध के संग लग गए प्रभ मीठा, साधु के संग काटे काटे डीठा, साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गाते पई हमारी, साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा वेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्यान है, साध की उपमा थे गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई श्लोक, मन साचा मुख साचा सोए अवरना पीखे कसबिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अस्पदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राजरंग कौला दे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जी एक ज्यो सुधा कु खोदय कु चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कह मन होए प्रगाश जैसे तरु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन अपने है सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जान पहे नानक जिन प्रभु आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुराना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदरसी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभु संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का उसदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, और तारे जो अंतर नाम सर्व में पेख।

आपन की सेवा सोई लाग है, जिसनों कृपा करे बड़ भाग है। नाम जपत पावे विश्राम, नाम जपत पावे है विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान। जो किच करे सो प्रभु कै रंग, सदा सदा वसे हर संग, सहज सुभाय हुए सो होए, करने हर पछाणे सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस्माए समाए, वे सुख निधान उन्हों बनवाए। आप कहो आप दीनो मान, नान प्रभु जने को जान। आपस कहो आप दीनो मान, नानक प्रभु जने को जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जननहार, जा कै सिमरन उधरिय नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गंडनहार गोपाल, सब जिया गया आपे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, इसके वृथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। आपन किया कछु ना होए, जे सो प्राणी लोचे कोए, किस भी ना ही तेरा किच काम। गत नानक जपे खर नाम, रूपवंत हो ना ही मोह है, प्रभु की जोत सगल घट सो है। तनवंता होए क्या को गर्व है, क्या सब किस किसका दिया दर्ब है। आति सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता वे। जे को हुए बहदाता, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा रोग। जो मंदर कौ थम है थमन, त्यो गुर का सुदमन है थमन। जो पाखाण नाव चढ़ तर है, प्राणी गुरचरण लगत निस्तर है। जीव अंधकार दीप प्रगास, गुर दर्शन देख मन हुए विगास। जो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की वाचो दूर, नानक की हरलो चापूर। मन मूर्ख काहे विललाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभु देव नुहार, और त्याग तू तिसे चितार। जो कच करे सोई सुखमान, पूला काहे फिरे जान। कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहो रसलो भी पतंग। राम नाम जब फिर दे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताज अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हृदय में तू। लाद खेप संतह संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। तहन्य तहन्य कह सब कोए, मुख उजल हर दृगह सोए। एव व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बल हारे। चरण साध के तोहे तोहे पियो, कर्म साध को अपना जियो। साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा और भागी पाइये, साध संघर कीर्तन गाइये। अनेक विघ्न ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गई संतह दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार। सर्व निधान जाके दृष्टि माहे, पुरो लिखे का लेना पाहे। सब किस तिसका हो करने जोग, किस बिन दूसर होवा ना हो। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सत्य ऊंच निर्मल है करनी। कार कृपा जिसका नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जा के मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए ते हुलोए, जाके हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा वाकार, सच उड़ते साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किच, त्रिगुण ती प्रपिन तिसे बुझाए नानका। जिस होवे सुप्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभु मन में राख, मानुक की तू प्रीत त्याग। तिस्ते ना ही किच कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे भी नांगा पेदाना, गैर गंभीर गहिर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन ही उन्नाओ। मनसा पूर्ण सुना जोग, जो कर पाया सोई हो। हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता कै।
ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਤਿਆਹ ਤਿਆਹ ਭਗਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਨੈ ਪੋਤ ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਤ ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ

जैसा जना वह तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना बेक रहे रंग, नाना विध किनो विस्तार, प्रभु नासी एकंकार, नाना चले करे खिनमाहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना विध कर बंट बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीव नानक खरनाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगला आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सर्वन, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जा का सकल स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की वाणी, सत पुरख समय समाणी, सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सफली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक पुरते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत्य जन जाकर हृदय प्रवेश, सत नृत बुझे जे कोय, नाम जपता हकीकत होए, आप सत किया सब सत, आप ये जाने अपनी मित गत, जिसकी सृष्टि सो करने हार, अवना बूझ करत विचार, करते कीमित न जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पहि बिस्मात, जिन बुझिया तिसाया स्वाद, प्रभु के रंग राच जन रहे, गुर के वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख का टनहार, जा के संग तरह संसार, जन का सेवक सो उठभागी, जन के संग एक लिवलागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे, श्लोक आदि सच जुगादि सच है पे सच, नानक होसी पे सच अस्पदी, चरण सत सत प्रसन्हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत विखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभु भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझनहार कौ सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन माने।

बहुत सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पछाने इसकी महिमा कौन बखानो इसका गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभु से अजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे इनकी ओट लेहे मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली छाट जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नानक किस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग से कुदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर वचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै कुल का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख कौ नाम तन दे पुर का सिख वड भागी है सतगुर सिख का हलत पलत सवार है नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारे गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस कौ कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय सद त्यावे मन बेचै।

मत ले। बीस विश्व गुरु का मन मान है, सो सेव परमेश्वर की गत जान है, सो सतगुर जिस हृदय हर नाव, अनेक बार गुरु का उबल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कच परम, सहस्यांत ले आना जाइए, नानक ऐसा गौर बड़ भागी पाई है, सफल दर्शन पे कत पुनीत, परसत चरणगत निर्मल रीत, पेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन लाधाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत,

हूँ बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचत प्रभु निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई, अनिक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिम

अमृत पीवे अमृत सो होए। उस पुरख का नाई कदे विनाश, जाख मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन मेरा कै हर हर एक। अंधकार दीप प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे। तप माहे ठाण वरताई, आनंद पै दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपहु होए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे। इसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। तित पाई चूके ब्रह्म गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभु आप बनाए,

जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभसीव, आप त्याग शरण गुरुदेव, योर तन जन्म का हुए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपावना छूटन हारे, सिमृत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, संगना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत

की गुण गाओ, सास सास प्रभु तुम्हें त्याओ। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नितनीत। एक कोटि को आधार, नानक मांगे नाम प्रभु सार। प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्तानी, पूर्ण पुरख नहीं डोलानी। सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग। परे संगान सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग। बड़ पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभु होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। इच पुनी श्रद्धा सब पूरी, रब रहा सद संग हजूरी। जिसका साथ इन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों विसरे जे काल।

लिखते काढ़ है, जन्म जन्म का टूटा गांठ है, गुरपुरे तते है बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहु काम, आन त्याग जपहु हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावहु, आप जपहु अब रह नाम जपावहु, भगत पाए तरी संसार, बिन भक्ति तन हो सी छार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सागल दुख का होवत नास, नानक नाम जपहु गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर यही सुहाओ, नेत्र हो पेक दार सुख होए, मन भिक्षे साध चरण तोए।

तब मोहो कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरह तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन वासन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूरन करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगित गोचर प्रभु का तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छेद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूप ही ज्योत संग समावे तह किसे भूख कौन तृप्तावे कण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतीब का कूचीन जब आपन आप उतारे तो सगन अपसगन कहाँ विचार है जय आपन आपन अपनी राह तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्मात नानक अपनी गत जानहु आप जय अचल छेद अभेद।

कर देखै खेल संकोचै तो नानक एकै जय अवगत भगत है आप जय पिसरै पासार संत प्रताप दू पाक का है धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आप है कौतक करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाए लावे जिस पावे

उबरे राखन हार त्याय निरपहो जपै सगल पहो मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै जिस पर राखै तिस नाहीं दूख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन को कोई ना पहुँचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट चरण कमल जाके मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल

प्रभु की उस्तत करहु संत मीत। सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिसमन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट।

रिद्ध नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मा

हकीकत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम। गोबिंद भगत कै।

करी जेती सिरठ उपाय विखा विण करमा के मिले लई मत विचरतन जवाहर माणक जे गुर के सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस किरत जगले जे तिस नदर न आवई ता वातना पुछ है के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते हाँ गुण दे तेह कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने करत तवल आकाश सुने दीप लोपाताल सुने पोहे ना सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने ईसर बर्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद सुने जोग जुगत तन भेद सुने शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सतसंतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़ पढ़ पावह मान सुने लागे सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास सुने सदा गुणा के गहा सुने सेख पीर पात सहा सुने अंधे पावे राहो सुने हत होए असगाहो नानक भगता सदा विगास सुने दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पीछे पछुताए कागद कलमना लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन के सुध मन मोहे चोटा न खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पत्सिव परगट जाए मन मगना चले पंथ मन तरम से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावह मोख द्वार मन परवार सातार मन तरे तारे गुर सिख मन नानक पवे न पिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावह दरगह मान पंचे सुह है दर्रा जान पंच का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तोल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होए सचियार तौले ऊपर केता पार धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवालियो रूप केती दात जाने कोण कूत किता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारे न जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख असंख जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ
असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मौन लिवलाय तार, कुदरत

असंख मूरख अंधकोर, असंख चोर हरामखोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कुड़े फिराहे, असंख मलेच मलपक खाए, असंख निंदक

तू सदा सलामत निरंकार, असंख्य नाव असंख्य थाओ, अगम अगम असंख्य लो। असंख्य कह है सिर पार होए, अखरे नाम अखरे सलाहा, अखरे ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरे लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे ते सिर नाहे, जी फुरमाए।

कौन ने पापी आखण ना है। कर कर करना लिख ले जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आहो जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जेको पावे दिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मलनाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, गिण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ।

लेख पुराण वक्त ना पायो का दया ये लिखन लेख पुराण थित वर ना जोगी जाने रुतमा हो ना कोई जा करता सिर टेकव साजे आपे जाने सोई क्यों कर आखा क्यों सलाही क्यों वरने क्यों जाना नानक आखण सब को आखे एक दो एक से आना वड्डा साहिब वड्डी नाही कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अग्गे गया न सो है पाता ला पाता लक आगास आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैस अठार है कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होए ता लिखिए लिखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहे एति सृतना पाया नदिया अते वहा पवे समुद ना जानिए है समुद सहा सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुलना होनी जे तिस मनो न विसरह अंत न सिस्ति कहण न अंत अंत न करने दिन न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापे अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे किता आकार अंत न जापे पारावार अंत करण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे ए हो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जे वड आप जाने आप नानक नदरी।

आखै गोविंद आखै ईसर आखै सिद्ध आखै केते किते बुद्ध आखै दानव आखै देव आखै सुरनर मुंजन सेव केते आखै आखण पाए केते कह कह उठ उठ जाए एते किते होर करे ताक न सके के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक

नानक उत्तम नीच न कोए। राति रुति तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल। तिस वी जे जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथ है सोहन पंच परवान नदरे करम पवै निशान। कच पकाए उथे पाए नानक गया जा पै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम। केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश। केते वर में काढ़त कड़िय रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते केते दुपदेश। केते इंद्र।

सेवा केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तीर्थ नाद विनोद कोड़ आनंद सरम खंड की बाणी रूप तीर्थ कड़त कड़िय बहुत अनूप।

करमे परमे जीत पीत अबा है गा है मान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सुमान समस्त निदाने नमो देव देवे पेखिये पेवे नमो काल काले नमो सर्प काले नमो सर्वणे नमो सर्पणे अनंगे नाते संगी परमाते नमो पान पाने नमो मान।

ਵਾਦੇ ਅਨੰਗੀਆਂ ਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰਕ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗ ਵਿਸ਼ਵੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਵੰ ਪਰਮ ਬਿਰਦੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਆ ਭੇਖੀਆ ਭਰਮੀ ਆ ਭੋਗੀ ਆ ਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗ ਵਿਸ਼ਵੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਹਾ ਸਹ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਨਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨਮੋ ਜਾਂਤਰ ਯੰਤ੍ਰ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤਾਂਤ੍ਰ ਤਾਂਤ੍ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰਬੰਗ ਪੂਰਨਾਸੀ ਅਨੁਪੇ ਰੂਪੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਿਰਦ ਕਰਤਾ ਦੋ ਊਰਧਰ ਧੰਗ ਗੰਗੋ ਘਰਤਾ ਪਾਲੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੰ ਪ੍ਰੋਚ ਪਾਲੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਧਾਤਾ ਦਿਆਲੰ ਅਛੇ ਦੀਏ ਪੇ ਦੀਏ ਨਾਮ ਕਾਮ ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤ ਅਸ਼ਟਧਾਮ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਜਲੇ ਹੈ ਤਲੇ ਹੈ ਭੀ ਤੈ ਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜੂ ਹੈ ਦੇਸ ਹੈ ਭੀ ਸਹਿ ਪੂਜੰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਚੰਦਰ ਗਾਦੇ ਅਬਾਦੇ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਲਮਾ ਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੋਂ ਨਿਰਣਾਤੇ ਨਮਸਤੋਂ ਗੁਰਮਾਤੇ ਨਮਸਤੋਂ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੋਂ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੋਂ ਅਕਾਲੇ ਨਮੋ ਨਮਸਤੋਂ ਅਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਭ ਦੇਸ਼ੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੇਸ਼ੇ ਨਮੋ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਜੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੇ ਨਮੋ ਮਾਏ ਮਾਏ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸੁਖ ਸੋਕੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੀਤੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਾਨ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਜਾਂਤਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦੇਸ਼ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਤੇ ਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਖਿਜੇ ਭਿਜੇ ਸਮਸਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੇ ਕਿਰਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਦਾ ਸਰਬਦਾ ਅਰਿਤ ਸਿਧਿੰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ ਅਖਲ ਜੋਗੇ ਅਚਲ ਭੋਗੇ ਅਚਲ ਰਾਜੇ ਅਟਲ ਸਾਜੇ ਅਕਲ ਤਰਮੰ ਅਲਖ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣ ਸਰਬੰ ਭੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ ਸਰਬੰ ਪਿਉਂ ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ ਰੁਵਾਲ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਜੋਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਸਰਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦਿ ਉਦਾਰ ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਕਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋਪਨ ਕਾਲ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਤਾਤ੍ਰ ਵਿਰਾਜ ਯਵ ਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ ਨਾਮ ਠਾਮ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਨੰਗ ਨਾ ਜੇਖ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤ ਜੋਨ ਆਦਿ ਸੇਖ ਦੇਸ ਆਉਣਾ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖਣਾ ਰਾਗ ਜਾ ਤ੍ਰਿਤਾਤ੍ਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਇ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ ਨਾਮ ਕਾਮ ਵਿਹੀਨ ਭੇਖਤ ਤਾਮ ਹੁਣੇ ਜਾਹੇ ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤਾ ਹੇ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਨੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਦੇਵ ਭਿਉ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਦ ਔਰ ਕਤੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਜੇਵ ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਨ ਵਿਹੀਨ ਚਾਕਰ ਬਾਕਰ ਫਿਰੈ ਚਾਕਰ ਚਾਕ ਮਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨ ਲੋਕ ਚੋ ਦਹਿ ਕੇ ਵਿਖੈ ਜਗ ਜਾ ਪਹੀ ਜੇ ਜਾਪ ਆਦ ਦੇਵਨਾਦ ਮੂਰਤਾ ਪਿਉਸ ਬਹਿ ਜੇ ਥਾ ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੁਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਸਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਰਚਿਓ ਸੋਮ ਭੋਗਣ ਭੰਜਨ ਹਾਰ ਕਾਲ ਇਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਪਰਮ ਰਹਿ ਤਪੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ ਅੰਗਰਾਗਨਾ ਰੰਗ ਜਾਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤਨਾ ਨਾਮ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇਕ ਕਾਮ ਵਾ ਭੂਪਮੀ ਕਨੁਸਤ ਪੁਰਖ ਧੂਤ ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਸੂਤ ਅੰਗਹੀਨ ਭੰਗਨਾ ਤਮੇ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਸਭ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ ਸਭ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਭ ਤੇਨ ਭੇਖ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਰੇਖ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾਕੇ ਨਿਤ ਭਾਕਤ ਨਿਤ ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਤ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਆਸਨ ਭੰਗ ਉਪਮਾਨ ਅੰਗਨ ਭੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਜ ਦਿਨ ਅਨਾਸ ਆਜਾਨ ਭਾਉ ਸਾਹਨ ਸਾਹੁ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਕਾਲ ਅਨਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗਾ ਭਾ ਪੰਗਤ ਨਿਤ ਪਾਰ ਗੁਣਗਨ ਉਦਾਰ ਮੁਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈਨ ਕਾਮਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚਨ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਆਲਿਸ਼ਿਆ ਕਰਮ ਆਦਿਸ਼ਿਆ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਭੁਨਾ ਡੈਂਡ ਬਾੜੇ ਚਾਚੀ ਚੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕੁੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਉਪਾਰੇ ਹਰੀਮ ਕਰਿਓ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਜਾਣੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਚਾਤ੍ਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸੁਤਰਿਆ ਨਾ ਮਿਤਰਿਆ ਨਾ ਪਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿਤਰਿਆ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਇ ਜਨਮ ਜਾਇ ਨੁਮ ਨਾ ਚਿਤਰਿਆ ਨਾ ਮਿਤਰਿਆ ਪ੍ਰੇ ਪਵਿਤਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿ ਦੀ ਸਹਿ ਦ੍ਰਿ ਸਹਿ ਕ੍ਰਿ ਸਹਿ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ ਕਿ ਆਸ਼ੀ ਦੇਸੇ ਕਿਆ ਬਿਜ ਪੇਸੇ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੇ ਕਿਆ ਪੰਜ ਪਰਮੇ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੇ ਕਿਆ ਆਦਿ ਸੋਕੇ ਕਿਆ ਉਤੂਤ ਬਣਨੇ ਕੇ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਏ ਕੇ ਤਰਮੰਗ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸੋਕ ਬਣਨੇ ਕੇ ਸਰਵਾ ਪੜਨੇ ਕੇ ਜਗਤੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ
के ब्रह्म स्वरूप है, के अनुपन रूप है, के आदिदेव है, के आप है, के चित्रंग भीन है, के कैदीन है, के रोजी रजा कर ही मेरे आके, के पाक गैब है, के गैबुल गैब है, के फुलगुना है, किसान सा है, के कान कुनिंद है, के रोजी देहिंद है, के राजा करीम है, के क्रमण करीम है, के सर्वंग कली है, के सर्वंग दली है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र दान है, के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जा हो, के सर्वत्र पा हो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र अंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भुख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप है, के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के प्रमुख फही है, के अकाल लाम है, के सैव कलाम है, के सूर्जु है, तमाम लुजू है, हमें सुसलाम सलीकत मुदाम है, गनी मुशिकस्त है, गरीब उलपुरस्त है, विमंदन मकान है, जमीन जमान है, तमीजुल तमाम है, रुजुअल निधान है, रिपुल जी मै रजय के किन्न है, आने कुल तरंग है, भेद है, अपंग है, जीजु निवाज है, गनी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुरूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम सदैव काम है, निर्वाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंगाद रूपे अनाथ स्वरूप अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे गंजे अगाधे सुमंग स्वरूपागे सुस्वरूप अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है, अछिज है, अछूत है, के नरक प्रनाश है, प्रतुल प्रभास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रजुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक स्वरूप है, प्रजुक्त अनूप है, चाचरी छंद आप भंग है, अनंग है, भीख है, लेख है, परम है, कर्म है, अनाद है, जुगाद है, जय है, वे है, भूत है, तूत है, नाश है, उदास है, तंद है, बंद है, भक्त है, विरक्त है, नाश है, प्रकाश है, निश्चिंत है, सुनिंत है, लिख है, दिख है, लेख है, भीख है, डाय है, गाय है, संभ है, अंगम है, नील है, नाथ है, नित्य सुनित है, जात है, जाद है, चिरपट संत प्रसाद सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंगता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्वंग तर्म सर्वंगता सर्वंगता सर्वंग तरसा संतो प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसा तेगात स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगे नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न जात न पाते न जाते न पाते न साकु श्री कमी तो मी कैसदैव प्रभा है अजय है अजय भगवती छंद न ताते न माते न जाते न पाते न साकु श्री कमी तो मी कैसदैव प्रभा है अजय है अजय भगवती छंद तो प्रसाद के जहार जहूर है के आज रजूर है मिसुर सलाम है समस्त कलाम है कि सारी दिमाग है कि उसमें चिराग है कि कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देह है के राज करीम है करीम कुमार है के सुन जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब निवाज है रेपुर सिकन है रसुल पुकन है कलंक प्रणास है समस्त निवास है गुंजल गनी में रजाय करीम है समस्त जुबा है किसा किराया के नलकंक प्रणास है व्यस्त निवास है के सरबुल गवन है मिसुल गवन है तमाम तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस है समस्त अधीश है आदेश सुललेख है मिसुल अभिख है जमीन जमा है मिकुलिमा है करीम कमाल है के जुरत जमाल है के चलंग प्रकाश है के मित्र सुभाष के जब स्वरूप है के मित्र विभूत है के मित्र प्रसाय के आत्म प्रभा है के चलंग नंग है के मित्र अपंग है मत पार चंद प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम मर भर गण हर नर पर पंजन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर खण भर नर मन अनुभव नाश मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जतन मुदाम छिजंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जल तल अमन दिशा भंड जल तल महंत दिशिश बेअंत अनुभव ना तीर्थ तर तुरास आजान भाव सह आजान भाव एक कशदाह ओंकार कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित्र नाम आज अन छिज गात आज जिना बात अन चन गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन टट पार आज इट धर मत सीट कर मान भरण अनंत दाता महांतर बोल मना छंद तो प्रसाद कुणाले हर काले है कलकंडन है मंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उपारण है तृत के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग करें सर्वपास है सर्वनाश है करुणा करें विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलकंडस है प्रत्ये पर है करुणा करें करुणा कर है जपा जप है थपा थप है कृता कृत्य मृत मृत मृत मृत करुणा कृत्य कृत्य कृत्य धरणी तीर्थ है तीसरे परमेश्वर है कृता कृत्य मृत मृत है
आज अब्बा करते मृत मृत नायक है, खलकायक है, विश्वभर है, कुण नौले है, नृप नायक है, सृपायक है, पोपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जब जापन है, अकलन करते सलवा करते हैं, करता कर है, हरतार है, प्रताप करता कर है, हरता है, परमात्म है, सर्वात्म आत्म बस है, जिसकी जस है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो चांद्र चंद्र, नमो राजराजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राय संताम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलयकर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके, नमो आसास नमो बांक वंकी अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले आनंगी अकामे कचरी छंद। अजय अलय भय भय भूजू नास कास गंज भंज अलख पख काल दयाल लेख पेक नाम काम गाढ़ा नाते परमाते जूनिय मुनि नारागे नारंगे नारूपे नारेखे आकर्म अपर्म गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश्य गुंजल अनामे समस्तल निवास निलकाम विपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्म प्रणाश्य सुद्रमुंग विपूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणाशी करी मुन कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय गनी में हरियं करियं करी मुन रही में चात्र चक्रवर्ती चात्र चक्र भुक्ते स्वयं भोग सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणाशी दयालं स्वरूप।

गुण सतगुर मुक्त ना पाए। आप हो सिख गुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी, बाणी ता गाओ गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म हो वे हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पाणी, कह नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर रसना कहया, कछु ना जानी चित जिनका हिलया माया, बोलन पैरवाणी, कह नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी। गुरु का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हो वसमाओ। शब्द सेती मन मिलिया चलाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो देवो जाए, कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सिर सकता आप उपाय कह करता, पे कुमरताए कुमरताए आप वे कह गुरु किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त सूद मन मसाए। गुर गुरमुख जिसनो आप ग्रेस होवे, एक सस्यों लिव लाए, कह नानक आप करता पे हुकुम बुझाए। सिमरत सा त्रिकुण पाप विचार दे, तत्तै सार न जानी, तत्तै सार न जानी गुरु बाजो, तत्तै सार न जानी। तिही गुणी संसार ब्रह्म सुत्ता, सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो मन दिन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, अब दाता जी अगन में हार पहुंचावे। उसनो क्यों कोई न सके, जिसनो आपने लिव लावे, आपने लिव आपे लाए, गुरु सदा संभालिए। कह नानक अब दाता सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर में तैसी बार माया, माया अगन सभी को जही करते खेल छाया। जात इस पाणा तन जमे आ परिवार, भला पाया लिव चुड़की लगी तिसना माया।

पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करणे सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखे लख करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच निकच महल।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे प्रहजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी।

अलमल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पत गवाई वृणावे किस थाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी।

0: जतिस दावे जुक्त न जाने छड बह करबार सबको पूरा पे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जापे महला पहला
1: वदिस वज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारियां करता क्रिस होए अगे जात ना जोर है अगे जीव नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जना कुछ उत्पाया

दुख दारू सुख रोग पया जा सुखताम न होई। तू करता करण में नही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरे।

जुग जुग फेर बटाइया ज्ञानी बुझह ताहे सतजुग रस संतोका धर्म गरथवा हो त्रेतरथ जत का जोर गरथवा हो द्वापर तप

से मलरुक सराय रात दीर्घात मोच ओए जे आम है आस कर जाहे निराशे केत फल फिक्के फुल बक बके कामना वह पत मिठत नीवे नानका।

नहीं आऊंगा। संसार ने ऐसा सुख त्याग के संसारी सुखां दी भज दौड़ विच ये जीवन गवा लिया। जो असी भज दौड़ के सुख सुविधावां जिंदगी जीवन दियां इकट्ठियां करदे आं, ये सुख ते सुविधावां गुरु प्यारे सदीवी नहीं हैं, ये उन्ने समय दियां ही ने जिन्ना चिर पल्ले धन है माया है। अगर ये साथ छड़ दें दी ते वो सुख भी खत्म हो जाते हैं। पर गुरु प्यारे गुरु अमरदास महाराज अज कृपा करदे ने के गुरु दसी सेवा हुण गुरु केड़ी सेवा करन लई प्रेरद है मनुख नू। ओ केड़ा श्रोमणी कर्म है जो गुरु करन लई मनुख नू इंसान नू सतगुरु समझाउंदे मुखातब करदे ने। मनुखी जीवन विच सब तो करन योग प्रमुख कर्म है जपो तां एको नामा अवर नेराफल कामा। ऐ मनुख तैनू वाहेगुरु ने ए जीवन बख्शी है, जिंदगी बख्शी है, तेक परमेश्वर दा नाम जपिया कर। नाम सिमरन तो बिना होर जितने मर्जी कर्म कर लै, फल स्वरूप जो अज गुरु अमरदास महाराज समझाउंदे ओ प्राप्त नहीं जे होना। एदी प्राप्ति जेड़ी ए आत्मक सुख दी जेड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा, ओ इको ही है जो गुरु कहिंदा ओ कार कर, ओ कम कर, गुर कहे आ साकार कमाऊ। गुरु यही प्रेरद है कि आवो सिख सत गुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सारियां बाणियां विचों श्रोमणी बाणी तुर तो आई, निरंकार पासों आई ए बाणी है। इनू पढ़ो, गावो, सुनो, ये गुरु ने हुक्म कीता है। जिवें जिवें गुरु सोबत विच संगत विच आके इनू पढ़ोगे, गाओगे, सुनोगे, ऐसा सुख प्राप्त होएगा जिनू गुरमत विच आत्मक सुख किया। आत्मक सुख मिलदे आई गुरु के प्यारे ओ सारे दुख चले जांदे। दुखां लई जिंदगी विच पंजवें पातशाह बचन कर दे कोई जगह ही नहीं रह जाती। हुण दुखां ना ही जाए जाए जगह नू कहिंदे, इत्थे ही बस नहीं। ए सुख जिन्हां नू गुरु कृपा नाल मिलदा है ना, जम्मण मरना मिट गया। गुरबाणी अंदर सब तो वड्डा दुख जेड़ा वो है बार बार जमना ते मर जाना। एदों वड्डा गुरमत ने कोई होर दुख बयान नहीं कीता। गुरवाक है, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम। सहब बचन कर दे मनुख सब तो लंबी सजा यही है, यही सब तो वड्डा दुख है, बार बार जमना ते फिर मर जाना। एदों वड्डा कोई दुख नहीं। पर गुरु दसी सेवा गुरु सोबत विच बैठ के कीतियां ओ सुख मिलदा है, जमन मरना मिट गया। ए लंबा दुख जड़ा जन्म ते मरन दे ए भी

कुसुम बसंत गणंत को आवे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तुहे बन आवे सुख टल गुर सेवी है एह निस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै

माया कारण श्रम अत करै, सो माया लै गाडै धरै, अत संचय समझै नहीं मूड़।

दर्शन निमक ताप त्रैमोचन परसत मुक्त करत गृह कूप रहाउ। मेरी बांधी भगत छिड़ावै, बांध है भगत

दुख सुख दो सम कर जाने, बुरा भला संसार। शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाई है,

शिख वसे। गुरु कर आए बाणा भी पा लिया अमृत भी छक लिया पर जे अंदरों कपट ना गया तो कोई फायदा नहीं। अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल सतगुरु ऐसी कृपा करो साढ़े सारा दे मन धुप जान। बाणी धोंदी है बाणी पाक पवित्र करती है बाणी निर्मल करती है वध तो वध बाणी पढ़नी चाहिए है। गुरसिखां दी गुरमुखां दी संगत करनी चाहिए है।

महाराज जी की पावन हजूरी विच दोने बच्चे सुभायमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुके हैं जी। सो परिवार को हुक्म होया सी कि जा तू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तेरे सब कुछ मैं सौंपया जा तेरा बंदा

पानी नाल बड़ा संबंध है मछली दा। सतगुरु दे बचना ते गौर कर, एडा संबंध है, एडा गूढ़ा संबंध है। ये पानी नहीं है ते मौत स्वीकार, तड़प तड़प के उन्हें मर जाना। सतगुरु सानू समझाउणा कर रहे हैं, कहंदे ने तेरी अवस्था गुरु तो बिना किवें बनेगी, इहो जी प्रीत पा सकना गुरु ना, इहो जिहा इश्क गुरु नाल कर सकना, मोहब्बत हो सकती है। ये मोहब्बत ही तेसी सत्संग होर की सी, खोपरियां लै गई, बंद बंद कटे गए, उबलदियां देगां विच उबल गए, ये मोहब्बत तेसी इश्क सी, दृढ़ता सी, फेत सी। आर्यां नाल शरीर दे दो दो फाड़ हो जांदे ने, इहदी अरबता ते तवियां तत्ती तवियां ते बैठ के ही शुरू हो गई। गुरु ने इहते सिखाउणा सानू, इहते सिखाया कि वेख सिदक विच किवें रहना है, भरोसे विच किवें रहना है। चमड़ी है ना, जांदी है ते जावे, पर अंदर जेड़ा बैठा है बाणी बाणी प्रभु की, सबको बोले सारे आखो आप अडोल न कबहु, उन्हें डोलन देना। शरीर जांदा ते चला जाए, शरीर ते बहुत चले गए, गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी वो भी बीत गई। सतगुरु दे फरजंद रोज सुन दे आ रहे हैं, कितनी प्रीत होवेगी, कितना इश्क होवेगा गुरु नाल, कितनी मोहब्बत होवेगी। कि सुबह भी हैरान हो गया सी, इन्हें उम्रां ते बड़ियां छोटियां ने पर जज्बा बहुत है। बस गल इन्हें किसी साथ संगत शब्द सारे मिलके पढ़िए ते ए अरदास भी करिए कि सच्चे पातशाह की सिदक ते भरोसा इत्थे भी आ जाए। फिर ते साडे ए शहीदी सगम समागम मनाए सफल ने, मनाउंदे ते हर साल ही है, पर किन्ने क जीव होणगे, किन्नियां क ओह आत्मावां होणगियां, किन्ने क हिरदे होणगे जिन्हां नूं सट वजी होवेगी, दिल तड़पिया होवेगा। सतगुरु दा वचन है न विरले ना ही कणे, वो कोई विरले ही हुंदे ने। मैं ते सुनिया कई जगह इन्हां दिनां विच इस समय विच लोकां ने आसन भी भुंजे ही लाए हुंदे ने, वो आसन भुंजे इस करके लगता भी नहीं पलंग ते नहीं सौना, ध्यान सारा साहबजादियां वल है, ध्यान सारा मात गुजर वल है।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਲਦੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮਛਲੀ ਨੀਲ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪੀ ਨਾ ਪੀ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਮਨ ਐਸਾ ਨਿਹੋ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਆਓ ਪੜੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ।